0: 24 मिनट 1 2 3 4 सेकंड हुए हैं और कंसोल की घड़ी में भी 5:24:89:10 हुए हैं सर। कंप्यूटर नंबर 1 टेस्टिंग।
1: बात हमारी गीत आपके कार्यक्रम के सभी
0: सर जी विविध भारती मुंबई टेस्टिंग। साहब जी कंप्यूटर नंबर 2 टेस्टिंग सर।